0: It's the new year. New financial year. And we've got good news. 7HOFM's many happy returns. Let us know how you'd like to spend a $2,000 refund. And get ready to shop. Register at 7hofm.com.au. And August 1st could be your payday. Many happy returns from your taxation station. Nah, doesn't sound quite right. From us at 7HOFM. Thanks to Reconnect Support Services. Disability Support Service of the Year. Many happy returns.
1: Create an outdoor space you can use all year round with Optimo awnings and Ziptrack blinds from King's Outdoor Living. Locally made, professionally installed right here in Tasmania. Choose an Optimo awning in flat, curved or gable design to suit the style of your home. Combine with Ziptrack outdoor blinds to complete a stylish space protected from the weather, rain, hail or shine. Optimo awnings and Ziptrack blinds. Get a quote today. Visit kingsoutdoorliving.com.au.
2: क्या आप बेहतर करियर की तलाश में हैं? योग्यता से कहीं अधिक वो नौकरी पाने का वास्तविक मौका जो आप वास्तव में चाहते हैं? AAS ऑस्ट्रेलियाई शैक्षणिक समाधान ये उद्योग प्रशिक्षण और बेहतर कार्य अवसरों के लिए आपका मार्ग है. ऑस्ट्रेलियन अकेडमिक सॉल्यूशंस अनुकूलित समाधान प्रदान करता है सुरक्षा निर्माण यातायात नियंत्रण में व्यवहारिक प्रशिक्षण के साथ और आतिथ्य सत्कार बस कुछ ही नाम है. आइए और CBD में 45 मुरे स्ट्रीट पर लेवल 3 पर हमसे मिलें और आज ही सही कौशल के साथ तेजी से